जेते बदन सिर सब तारें। आप अपनी बूझ उचारें तुम सब ही ते रत निरालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड उचारत पिदा जा को पेब न पावत बेदा ताको कर पानन मानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेब आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न पिन तोहे तेती तुमरा लखाना जाए पसारा कि विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई भूपा अंड जिर सेत जकीनी तुझ खान बहो रच दीनी कौ फूल राजा हवै बैठा कौ सिमट पयो संकर कैठा सगरी सिड़ दिखाए चंपवा जुगा स्वरूप स्यम भव अवरछा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठो दुपाता सकल मलेश करो रण घाता जे अस तुज तव शरणी परे तिनके दुड़ दुगत हवै मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकटने आए हैं रक्षा हुई ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रेन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हूँ ताके ताव तन कमो हर हूँ रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुटशा छवै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते आरो कहां दार तो दुष्ट दोख तेरा हम खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख तेरे हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख तेरे हो बचाई सवैया पाही गहे जबते तुम रे तबते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कह गहो तुहारो द्वार भय गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कह गहो तुहारो द्वार भय गहे की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन पर वार परियां शब्द गावण आईया शब्दो ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहूं हरनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसाहारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बेट हो जिस दियां ये बड़ियाइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द रो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सपग कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुबस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तैसक हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵੇਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੁਰ ਧਾਰੋ ਤੁਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਅਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ

श्री वाहे गुरु साहिब जी, सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्व कला बनियाई, प्रगट पई सगले जुग अंतर।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम। श्री वाहिगुरु जी सुही महला चौथा।

जी की फतेह। जैतसरी महला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है।

वेद कहनक बात सहस अठारह कहनक ते बांस लुक तहात लिखा हो त लिखी अलिखा हो विनाश। नानक वड़ा आखी है आपे जाने आपो, सालाही सालाही ती सुरत न पाई है नदियां तय वाप है समुद न जानी है समुद सह सुल्तान ग्रह से ती माल तन कीड़ी तोरना हो बनी जित स्मरण विसर अंत ना सिवती कह न अंतु अंत न करना दे न अंतु अंत न वेखण सुन न अंतु अंत न जापै क्या मन मंतु अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण किते बिरलाहि ता के अंत न पाए जाहि। इहो अंत ना जाने कोई बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ इबड़ ऊंचा होवे कोई तो सुचे कहो जाने सोई जिबड़े आप जाने आप नानक निधरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंग है जोद अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खप तुटै बेकार किते लैलै मुकर पाहे किते मूर्खाही खाहे कित्या दो पूछत मार ए पे दात्री दा तार बंद खलासी भाणै होय राख न सकै कोय जे को खाए काखण पाए ओ जाणै जे तिया मोय खाए। आपे जाने आपे दे आखे से पे कई के जिसनों बख्शे सिफत सराह नानक पातशाही पातशाह मुल गुण मुलवा पारी अमल भंडार मुल आवे मुल जाहे मुल पाए मुल समाहे मुल तहर मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान मुल बख्शीश मुल निशान मुल कर मुल फुरमान मुलो मुलाख्या न जाए आखा कर हिल बिलाए। आखै वेद पाठ पुराण आखै पड़े करे बखियाण आखै बरमे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद आखै ईश्वर आखै सिद्ध आखै किते कीते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुंजन सेव किते आखै आखण पाहि किते कह कै उठ जाहि इते किते होर करहि ताख न सकै कई के। जे बड़ पावे ते बड़ होए नानक जान है साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावार गावार सो धर के है सो करके है जित वैसल संभाले। वाजे नाद अनेको संखा किते बावने हारे किते राग परी सो कही अन किते गावने हारे गावे तोनो पौन पानी वैसंतर गावे राजा तुरु द्वारी। गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म बिचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बिचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदां नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन तनु पाए तेरे अरसर तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडव भंडा कर कर रखे तहारे सही तुदनो गावे जुदत पहावन दत्ते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं जितन आवर नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सच ही नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी पांति कर कर जन सी माया जन पाही कर कर विखै कीता अपना जब तिसदी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पातशाह शाह पातशाह नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरण पर चोली ध्यान की करै विभूत किंथा काल कुवारी काया जुग दरंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेत सै आदेश आद नीलनाद अनाह जुग जुग एको वेश। भुगत गयान दया भंडारण कट कट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जग ही रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दो कार चलावै लिखे आवै भाग आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। इका माई जुगत व्याई तिन चेले पुरबाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जीव दिस भावै तवै चलावै जो होवै फुरमान ओ वेखै उना नदर न आवै बहुत वडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦਿਤ ਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸੋ ਲੱਖ ਲਗਿੜਾ ਆਖੀ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏ ਤੁਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਟਹਿਆਹੀ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪਾਹੀਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਨੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵਿਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੋਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਜੀ ਉਤਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਹੀ ਨਾਨੰਗ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਇਆਖੋ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਿਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਕੇ ਵੇਸ ਕਿਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੁਪ ਦੇਸ ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮੁਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਿਤੀ ਅਖਾਣੀ ਕਿਤੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕਿਤੀਆਂ ਸੋਤੀ ਸੇਵ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਯੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਕੌੜਤ ਕਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਥੀਆਂ ਨ ਜਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਈ ਦਿੱਥੈ ਘੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਮਾਤਮਨ ਬੁੱਧ ਦਿੱਥੈ ਘੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁੱਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਦਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਸਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੰਤ ਨਿਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਰਣ ਮਤ ਵਿਦਥੀ ਹਾਰ ਪਉ ਹਲਾ ਗੰਧ ਬਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਧ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਛੱਪੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨਰ ਵਰਨ ਜਾਤਰ ਪਾਤ ਨੈਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਗਤ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮੂਰ ਤਨ ਪੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣੁ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਣ ਗਣਿਜੈ ਤਿਰਪੌਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਰਨ ਕਹਿ ਤੋ ਤਵ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਡਾਹੇ
नमस्तुंग नीले नमस्तुंग नादे नमस्तुंग शेदे नमस्तुंग गादे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग उदारे नमस्तुंग पारे नमस्तुंग सूर्य कै नमस्तुंग नी कै नमस्तुंग पूते नमस्तुंग जूपे नमस्तुंग निरकर्मे नमस्तुंग निरपरमे नमस्तुंग निर्देशे नमस्तुंग निरपहेशे नमस्तुंग निरनामे नमस्तुंग निरकामे नमस्तुंग निरताते नमस्तुंग निरखाते नमस्तुंग निरतूते नमस्तुंग भूते नमस्तुंग लोके नमस्तुंग सोके नमस्तंग नृतापे नमस्तंग थापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग भाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग अगमे नमस्तस्रमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्तजबे उदेशंग देशे नमस्तंग पहेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस देव नमस्तंग पेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोभन में नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कर्तारंग नमो सर्वतंदे नमो स्तवंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरभाके नमस्तंग रीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तासरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोग नमो पोह पोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी शंत प्रसाद रूप है नूप है जू है पू है लेख है पेख है नाम है काम है तेह है पेह है जीत है पीत है त्रिमान निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है अजय है जाद है जन्म है वर्ण है पूत है परन है अगंज है पंज है चूज है चंज है मीक है रफीक है तंत है बंद है निर्भूज है सूज है काल है जाल है लह है जह अनंत है महंत है ली केंद्र श्री केंद्र लंब है संभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गह मान है दान अनेक है फ्रेक है भुजंग प्याज छंद नमो सर्वमानी समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नंगी नाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पान नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पान नमो गीत गीत नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाद नमो पान पान नमो भाद भादे रंगी नामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सिंह परम रूपे नमो जोग जुगे सिंह परम सिधे नमो राज राजे सिंह परम हृदय नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखी परमी पोगी भोगते नमो जोग जुगसन परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेद विसो धर्मे नमो रोग हर्त नमो राग रूपे नमो शाह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चदानंद सरंग प्रणासी रूपे रूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता अदो उर्द अर्दंग अगु ओघहर्ता परंग परम परमेश्वर प्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदी पेदी नामं काम अशेदी पेदी नामं कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पेह हैं प्रभु है जू हैं देस हैं भेस हैं भुजंग प्याज छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साहसाजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो राज राजे नमो साहसाजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीत नमो प्रीत प्रीत नमो रोख रोख नमो सोख सोख नमो सर रोग्य नमो सर पोग्य नमो सर जीतंग नमो सर प्रीतंग नमो सर ज्ञान परमतानंग नमो सर मंत्रंग नमो सर जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर कृष्ण नमो सर रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवनो बीज बीजे खिजे पिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदारे से निवासी चरपुर छंद तो प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्मंग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देहवंग सर्वंग पेहवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआले छंद प्रसाद
ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਸਰਬਮਾਨ ਤ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਪੇਵਲ ਧਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋਪਨ ਕਾਲ ਜਤ ਤਤ ਵਰਾਜੇ ਅਦੂਤ ਰੂਪ ਸਾਲ ਨਾ ਮਿਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦ ਪੁਰਖ ਧਾਰ ਮੂਰਤ ਜੋਨ ਆਦ ਸੇਖ ਦੇਹ ਸ਼ੌਰ ਨ ਭੇਹ ਜਾ ਕੋ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਵਿਹੀਨ ਪੇਖ ਧਾਮੂ ਨਾ ਜਾਏ ਸਰਮਾਨ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਸਦਾ ਮਾਨ ਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇ ਪਿਵ ਨਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿਹੇ ਜੇ ਤਾਤਮਾ ਤਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਧੈ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਜਗ ਜਾਪੀ ਜੇ ਜਾਪ ਆ ਦੇਵਨਾਥ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਵ ਜੇ ਥਾਪ ਓ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਸਰਬ ਵਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੁਯੰ ਪਾਵੁ ਗੜਨ ਪੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਸ ਧਰਮ ਤਾਮਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਲੱਖ ਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤਰ ਨਾਮ ਹੋਂ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਗਦਾਏ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀ ਕਾਨੂੰ ਉਸਤਦ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੁਬਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤਿਨ ਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕੈ ਨਿਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਿਵੋਚਿਤ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਧਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਆਨੰਗ ਅਨਪਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸਦਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਵਾਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨ ਭੂਤ ਅੰਗ ਅਭ ਭੰਗ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਧਾਰ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਦਗਤ ਖੰਡ ਲਿਸੈ ਕਰਮ ਦਿਸੈ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਨਾਢਿਆ ਅੰਡਡ ਬਾਢਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੋਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭੁਜੰ ਪਿਆ ਛੰਦ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਜਾ ਤਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਪਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਇ ਜਨਮੰਗ ਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੀਸੈ ਦਿਸੈ ਦ੍ਰਿਸੈ ਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਤੇ ਕਿਆ ਛਜਦੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਬਜ ਪਹੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਗੰਜ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਸੁਕੈ ਕਿ ਦੂਤ ਵਰਨੈ ਕਿ ਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾਹੇ ਕਿ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾ ਭਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੋਨ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਅਪਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਤਰੰਗ ਵਿਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਅਬ ਹੈ ਗੈਬਲ ਗੈਬ ਕਿ ਗੈਬਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਭੀਮ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲੀਖਿਤ ਮੁਧਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੁਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਰੀਫ ਰਜੀਮ ਹੈ ਰਿਜਾਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨੇਕਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਮੁਲਖ ਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਰਿਮੁਗਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ
सदैवं स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूप है, नाद स्वरूप है, नंगी ना मेह त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे गंजे गाधे सुभंग सर्भागे सो सर्वानरागे त्रिपग स्वरूप है, छज्जा छूत है, किनरकं प्रणास है, पृथ्वी प्रभास है, नृगत प्रभा है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, नृगत सदा है, विपुक्त प्रभा है, नृगत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेक है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अपह है, अपूत है, अधूत है, अनास है, उदास है, अतंद है, अभंद है, भक्त है, नास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, लिख है, दिख है, लिख है, पेख है, डा है, गा है, संभ है, गंभ है, नील है, नाद है, नित्य है, सुनित है, जात है, जाद है, चरपट शंत प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सर्वं शांत प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे पंगं विपूते परमात्मं प्रमाते सदा सर्वसाते गा स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी ना मे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं श्री कहमे तो मी कहम सदैवं प्रवाहे अजय हैं अजाहे भगवती शंत प्रसाद हु के जार जूर है के आजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करीम कमाल है के उसन जमाल है गनी मुल्ख राज हैं गरीब निवाज हैं हरी फुल गरीब बुल निवाज हैं हरी फुल से कन्न है हेरा सुल्फ कन्न है कलंकं प्रणास हैं समस्त निवास हैं गंजल गनी मेरे जय करहीम है समस्त जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं प्रणास हैं बैस्तो निवास हैं के सर्व गवन है मे सर्वन है तमामुल तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अदीस है देश लेख है मेसल भेख है जमीन जमा है मैं कुलमा है कृमुल कमाल है कि जुत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो विभूत है कि मैं तो पसा है कि आत्म प्रभा है कि चलंग नंग है कि मैं तो भंग है मत पारशन तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर गंज हंदर प्रभंजन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बंदर मंडन पवनास मुन मन प्रकाश गुण गुण प्रणाम जल थर मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उधार जल थल मंड दिस भंड जल थल महंत दिस व्यंतन पवनाओ तिरता तुरा सुहा जान बाव एक सदा हो ओंकार याद कथनी नाद खल खंड ख्याल गुरवर काल कर कर प्रणाम च चर नाम अंशित गात अज जना भातन चंज गात अंदरंज बात आन टुट पंडा हर अन ठट पार वाडीठ धर्म ठीठ कर्म अनवरण अंत दाता वहन तर बोल मना शंत प्रसाद करनालिया रखालिया खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है तित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य सर्वनाश्य करना कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करना करें जपा जपें थपा थपें कृता कृता मृता मृता मृता मृता करना कृत्य हैं कृता कृत्य धरणी तृप्त हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत्य हैं मृता मृत हैं अजबा कृत्य हैं मृता मृत हैं निर्णायक हैं खलकायिक हैं विश्वंबर हैं करनाल्य हैं नृपनायिक हैं सर्पायिक हैं पपंजन हर गंजन है रिपतापन है जपजापन है कलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता करें हरता हर हैं परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्या शांत नमो सूर सूर जिनमो चंद्र चंद्र नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो ते तेजे नमो बृंद बृंद हे नमो बीज बीज नमो रासंग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोग नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र ध्यान
नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोज नमो पान पान नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंब भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस वास नमो भांक बंके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी अकामी एक श्री छंद जैल पह बह पूजू नास कास अगंज पंज लख पख अकाल दयालु अपू अजू नास कासु गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गाह डह नाथे परमाथे जोनि मोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्या छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तो निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदा नन सतरंग परनासी करीम कुनिंदा समस्त निवासी जय विभूते जय गनीमे हरियं करियं करिमोरिहिमे चतर चक्र भरती चतर चक्र भोगते सुयंग भव सुभंग सर्वधा सर्वजुगते दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते एक ओंकार सतगुर प्रसाद हूत प्रसाद सवैये पाशे दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जतीके सूर सुरार्धन शुद्ध सुधाधक संत समूह नेक मतीके सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पतीके श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बन एक रती के माति मतंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूपली बिद न्यावत शीशन जात बिचारे हिते पहे तो कहाँ पहे भूपते अंत को नंगे पाए पदहारे जीत फिरा सब दे दिशान को बाज टोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गुजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे पूत पुवेख पुवान के पुपत कौन कना नहीं जात विचारे श्री पा श्री पुवान पजे बिनंत कुंत के तम सदारे तीर्थ नहन दयादम दान सुसन जम ने मन एक बसिख है वेद पुराण कथे भो कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत हर सब सुचार हजार के देख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंखा लैना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पा श्री पवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अवचार सार की तार पछैया तोर तदेश मलिंद मवासन मत गजान के मान मलैया गाड़े गड़ाण को तोड़ निहारू सुवातनी जग चार लवैया सैब सी सबको सरनायक जाचक नेक सोएक दवैया दानव दे फने साचर भूत पोयक पहांज पैंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बो पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवा लोक चपैंगे मानव इंद्र गजेंद्र हद पोजों त्रिलोको राज करेंगे कोट शिनानक जादक दान अनेक सोमवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पातु अंध फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पद के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठो भगत ध्यान लगायो नात फिरो लिए सा समुद्र न लोग पर लोग गवायो बास की उपख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहूँ सुन लो सब जन प्रेम की उतनी ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग लटकायो काहू लकरवाच दिशा मैं काहू पछा कोसी से निभायो कहू पुतानक पूजत है पास को मृतानक पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को पेदन पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को पेदन पायो कव्यो बाच बेनती चौपई पातशे दसवीं हमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुस्वै तुम काबू आप हद मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मूर्छा निज करद करे ऐसा वैरण कुआ संघरे पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहूं स तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है
ਆਪ ਹਾਦ ਨਿਮ ਜ ਵਰਿਆ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਮਾਰੇ ਪੱਛਿਆ ਸ਼ੀ ਅਸਤੋ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰਚਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੁਰਖ ਨਿਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮੋ ਪੁਰੀ ਜਤ ਦਸਗੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੋ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਮਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀ ਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਤੀਓ ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਮਾਰਾ ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵਦਾਂ ਜਸ਼ਨ ਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਕਨ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਂ ਬਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਗਏ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਰ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰ ਤਵ ਦੇਹ ਪਾਰਾ ਜਬਿਆ ਕਰ ਕਰ ਤੋਂ ਕਬ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸਿਰ ਸਭ ਧਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭੀ ਤੇਰੇ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਂਤ ਬੇਦ ਪਿਦੇ ਰਿਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਸੰਭ ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਨਣ ਮਾਨਤ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤਨੈ ਭਿਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਪਹੋ ਰਾਵ ਕਹਿ ਭੂਪਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚ ਦਿਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਰ ਰਾਜ ਹਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਣ ਪਹੋ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸਿਰ ਦਿਖਾਏ ਚੰਪ ਵਾ ਜੁਗਾ ਸਰੂਪ ਸਿ ਅੰਪਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੂੰ ਸਿੱਖੋ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ ਤੇ ਉਠ ਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਲਿਚ ਕਰੋਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਵਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਆਏ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟ੍ਰੇਤ ਕਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰ ਹੋ ਰਿਸ਼ਿਦ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁੜਛਾ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਾਹ ਦਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਰਹਾਂ ਖੜਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹੱਦ ਲਿਓ ਬਾਰੀ ਸਰਵ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ

ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरिया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाइय सभ्यंतर सोई, करण कारण समर्थ प्रभु जो करे सो होई। खिन मैं थापू थापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीपूर व्या सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सो होई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रबया सब लो होई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत श्री महला पंजवा। बार सलोका नाल इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जग